0: कहते हैं ये वापस लेकर जा रही है और ये सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि चमड़ी के नीचे होती है, चमड़ी के नीचे। लेकिन वो नाली जिससे हार्ट पूरे शरीर को खून भेज रहा है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और वो एक तरह की जीटी रोड है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है, इसमें ट्रैफिक रुकेगी नहीं, और वो डीप है। जैसे आपने देखा ना, बाप दाप को लड़ाई लगी ईरान में या ऐसे कुछ हो गया ना, बहुत से देशों से गैस या पेट्रोल जो भी कुछ आता है उसको लाने के लिए अंडरग्राउंड पाइप्स इवन समुद्र से भी आ रही हैं। अंडरग्राउंड पाइप बनी हुई हैं जो दूसरे देशों को वो सप्लाई करती है। उसका कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट है कि चाहे लड़ाई लग जाए चाहे कुछ हो जाए, भाई हमें इनको नहीं छेड़ना है, हमें इनको टच नहीं करना है, ठीक है। सो इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं और इस तरह वो सब चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ गई, उसमें अपनी भी तो रुकावट आ सकती है ना। मान लिया कोई टेररिस्ट ग्रुप है, उसने कुछ ऐसा कर दिया तो कर सकते हैं ना, वो तो कानून के अनुसार नहीं ना चल रहे, बिना कानून के चल रहे हैं। तो यही बात मैं शरीर के बारे में कह रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो शरीर के चलन, जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर के चलन के अनुसार ही नहीं होती, फिजियोलॉजी के मुताबिक नहीं होती। फिजियोलॉजी क्या है? एक नॉर्मल कर्म है, सांस का आना सांस का जाना, खून का आना खून का जाना। इसी तरह हर अंग का अपना अपना एक चलन है काम का, ऐसे ऐसे उसको काम करना है। लेकिन उस काम करने के ढंग में या रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो क्या शो करेगा? कुछ ना कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देगा। घर में आग लगी हो तो हम क्या करेंगे? चलाएंगे, रौला करेंगे कि भाई हमारे घर में आग लगी, हमारे घर में आग लगी। तो शरीर के अंदर भी अगर कुछ ऐसा घटित हो जाता है ना, तो फिर शरीर भी उसी तरह ही करता है, आपको बताता है कि मुझे ये हो रहा है, चला रहा है, ये अंदर ऐसे हो रहा है। ये हमारी बात है कि हम समझते हैं कि नहीं समझते। एक बार मैंने ये भी एग्जाम्पल दी थी कि बच्चा रोता है ना, तो माँ उसके रोने को, क्योंकि उसकी तो बोली यही है, अभी उसको और लफ्ज नहीं आते और बोली नहीं आती, सिर्फ रोना ही आता। उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको पॉटी करनी है रोएगा, उसको पेशाब करना है रोएगा, उसको खुराक चाहिए दूध चाहिए तो रोएगा। बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए उसके पास एक ही चीज है, रोना। लेकिन रोने का भी अलग अलग ढंग है। बहुत से ये लोग शिकारी लोग भी होते हैं ना, जो तीतर है बटेर है, इनकी अलग अलग आवाजों से पहचान जाते हैं कि भाई ये कौन सा जानवर बोल रहा है। इसी तरह जो सयानी माँ होती है ना, सयानी माँ बच्चे के रोने से ये अंदाजा लगा लेती है कि इसको क्या चाहिए, ये क्यों रो रहा है, अब ये दूध के लिए रो रहा है या इसको पॉटी की, इसको सफाई करने की जरूरत है या कुछ भी इस तरह। और जो बेचारी मैं नहीं समझते उनके बच्चे पॉटी भी नीचे में करे जा रहे हैं, वही उसी तरह चलाई जा रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है उसकी बोली में। यही बात इस शरीर के ऊपर भी लागू होती है, यही बात इसको समझने वाले डॉक्टर वैद्य हकीम जितने भी हैं उनके ऊपर भी लागू होती है कि अगर तो वो समझदार हैं तो फिर वो समझ जाएंगे कि शरीर के अंदर पैदा हो रही ये जो निशानियां मैं बता रहा हूं, ये निशानियां क्या बता रही हैं, क्या कह रही है कि अंदर क्या हो रहा है। और अगर वो जानकार नहीं है तो फिर निशानियां जितनी मर्जी हुई हो उनको नहीं पता चलता कि क्या है कैसे। जैसे मोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर मान लिया जाए, लोग बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक, तो सडन हार्ट अटैक आ गया जी, सभी लोग ये बोलते हैं सडन सडन कुछ नहीं होता शरीर में, शरीर के चलन में सडन कुछ नहीं होता, हर एक चीज जो है किसी ना किसी कारणवश होती है। और वो कारण को अगर हम जान लें, और कारण ऐसा नहीं है, बादल आएंगे तो एकदम ही नहीं है बरसात होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि ठंडी हवा चल रही है, काले बादल आ रहे हैं, अल्टीमेट पता ही है कि अब थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। इसी तरह शरीर के अंदर अगर कुछ भी घटित होता है तो वो सडन नहीं होता, उसके लिए सडन की बात यह कि चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, ये सडन की बात है। लेकिन इस सडन को भी शरीर कैसे लेता है, शरीर का रिस्पॉन्स क्या है, वो उसके बाद उसके सिम्टम पैदा होंगे, वो हमें जानना होगा। स्वेलिंग आएगी, ब्लीडिंग आएगी, फिर उसका जोड़ना जुड़ना कैसे है, उसकी रिजनरेशन कैसे कैसे होनी है, ये उसकी निशानियां हैं जो ये बताएंगी कि अंदर ये शरीर जीवित था, डेड बॉडी की हड्डी टूट जाएगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। जीवित को अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसके जो सिम्टम पैदा होंगे ये बताएंगे कि इसके अंदर जीवन शक्ति थी और उसका अपना एक चलन है, एक रूटीन है, और उस रूटीन को हम जानते हैं, पैथोलॉजिकली हम जानते हैं। और अगर उस रूटीन में अगर कोई खराबी होगी, रुकावट आएगी, तो फिर हम कैसे समझेंगे? उसकी निशानियां हैं, हम समझ पाएंगे कि भाई हाँ ये जो जख्म था, ये जो फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद ये नॉर्मल रिपेयर नहीं हो रहा और इसके पीछे ये कारण, ये निशानियां आ रही। वही बात मैंने एक बार आप सब लोगों को ये भी बताया था कि अगर मान लिया जाए किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, बार बार है, उसकी खुराक से है, उसके चलन विहार से है, एक्सरसाइज नहीं करना है, खुराक उसकी इस टाइप की है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आंखें ना, आंखों के नीचे या कहीं शरीर के अलग अलग भागों में पीले पीले से छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाएंगे और जिनको स्क्यूज करें तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा पीले रंग का, और इस तरह की डिपोजिशन अलग अलग जगह में हो जाएगी। पर हम चेहरे की बात कर रहे हैं कि सामने देखेंगे तो देखेंगे कि आंखों के नाक के साथ जहां आंख मिल रही है वहां पर छोटे छोटे इस तरह के पीले स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे। अगर उसको स्क्यूज करेंगे तो उसे कुछ निकल भी सकता है। डॉक्टर लोग आजकल उसकी कॉटराइज करते हैं या उसको स्क्यूज करके निकालते हैं या इस तरह के ट्रीटमेंट। लेकिन ये क्या है, ये है कि कबूतर कहे कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब तो बिल्ली नहीं आ रही, आपने वो स्पॉट्स पीले पीले से मिटा दिए, बाहर की जितनी भी निशानियां हैं वो हमने मिटा दी और हम क्या सोचते हैं कि अब तो बीमारी ठीक होगी। ऐसा नहीं है। इसी तरह के लोग जब वो नहीं जानते, चाहे वो डॉक्टर हैं चाहे पेशेंट आप खुद है, अगर वो नहीं जानते तो अल्टीमेट इस तरह के लोगों को अगर हार्ट अटैक होता है तो वो सडन अचानक हो गया, ऐसा जी अचानक नहीं हो गया, अंदर का शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा था, आपको बता रहा था कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो है लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन है, हाई डेंसिटी हाइपो लिपोप्रोटीन है, तो उनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। जो ब्रीक जैसे मोटी खंड होती है ना, चीनी होती है, तो उसको खोलने में समय लगेगा और जो ब्रीक चीनी होती है वो बैठ जाती है। इसी तरह की ये जो हमारा एलडीएल है, ये उसमें हमारे खून की नालियां में बैठना शुरू हो जाता है, जैसे बूरा खंड होती है, ब्रीक चीनी होती है, उसी की तरह बैठना शुरू हो जाता है, नालियां भर जाती हैं, जाम हो जाती हैं, और अल्टीमेटली जैसे जैसे और फैट बढ़ता जाता है, अंदर का नालियों का ल्यूमन कम होना शुरू हो जाता है। खून तो उतना ही है, खून तो मान लिया जाए एक आदमी के अंदर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही है, जब खून जो नालियां पूरी खुली हुई थी बड़ी आसानी से जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये हुआ अब खून, अब दिल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा, खून उसको पहुंचाना है अंगूठे तक, फिंगर टिप्स तक पहुंचाना है, उसको जोर लगाना पड़ेगा। तो हम बोलते इसको तो ब्लड प्रेशर हो गया, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, या अगर टांगों में कोई रुकावट आ गई, थकावट होगी, कुछ ऐसा हो गया, मांसपेशियां जो इतना काम नहीं कर रही, तो फिर हम कहते डायस्टोलिक हाई हो गया इसका, तो लगातार जो नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये सब निशानियां हमें बता रही हैं कि भाई क्या हो रहा है अंदर, जिसकी वजह से कोई ना कोई निशानियां इस तरह की पैदा हो रही हैं। और अगर हम टाइमली इन चीजों को समझ पाए तो फिर हम आने वाले किसी इस तरह के हालात से बच सकते हैं जिसको हम कहो सडन हो गया जी। सडन कुछ नहीं हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया है, हेमरेज हो गया ब्रेन में, तो ये सडन नहीं हो जाता, सडन हो गया है, क्योंकि उससे आने वाली बहुत सी पहली निशानियां हैं उनको हम नहीं जानते। और अगर हम जानते होते तो फिर हम उसका उपचार उस वक्त करते, या जो उपचार किया जा रहा है, जैसे मैंने ये कहा कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली और हमने कहा कि अब बिल्ली नहीं आ रही, बिल्ली तो आ रही है, या किसी डॉक्टर ने ये कोलेस्ट्रॉल के साइन वगैरह देखे आंखों में और उसने उसका निवारण कर दिया और फिर कहा कि नहीं अब तो ये ठीक हो गया, इट्स नॉट। अंदर से जब तक वो खून की नाड़ियां पूरी तरह साफ नहीं हो पाती, जब तक उसके बाद और डिपोजिशन होनी बंद नहीं होती, तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई हमने वो ठीक कर दिया, अब बिल्ली नहीं आ रही। बिल्ली तभी नहीं आएगी जब आपने उसके कारण रिमूव कर दिया। पहले की बात आपने जान लिया, जब जान लिया तो फिर उसको रिमूव कर दिया, बाहरी से नहीं अंदर से। क्योंकि बाहर आपने कोई मिट्टी नहीं लगाई कि यहाँ पर स्पॉट बना दिए हैं, अंदर से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, उस अंदर को जिसकी वजह से ये हुआ है, जब हमें ये जान पाएंगे और उसको करेक्ट कर पाएंगे तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि सडन हो गया है, अचानक हो गया है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं वही बातें आप सब लोगों के नजर में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छाती में बेसिकली छाती की बात नहीं है, पेन एक ऐसा लफ्ज है, मैंने बार बार बोला कि सबसे छोटा लफ्ज है किसी भी बीमारी को, किसी भी शरीर की आपदा को बताने के लिए हमारे पास दर्द पेन एक छोटे से छोटा लफ्ज है। अब उसके बाद पेन का एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये पेन सांस लेने में होती है, ये पेन सांस बाहर छोड़ने में होती है, ये पेन चलने से होती है, ये पेन खाने से होती है, किस तरह क्या है वो आगे एक्सप्लेन करेगा कि ये दर्द का अगला नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन सबसे पहला लफ्ज जो है किसी बीमारी को इंडिकेट करने का वो है पेन, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, शरीर का ताना बाना तो यही है ना कि मुंह से खुराक खाई, जो इसमें कार्रवाई होनी है, जो इसके हजम होना है, शरीर को क्या चाहिए रोजाना के लिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, तोड़ फोड़ के लिए, जैसे हम घर की रिपेयर करते हैं तो सीमेंट चाहिए ना, हम ईंट को ब्रेकेज होगी तो उसको सेट करने के लिए सीमेंट चाहिए ना, तो इसी तरह विटामिन सी चाहिए, हमारे विटामिन के चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो खुराक खाते हैं उसे वो निकल जाता है, वो शरीर उसे ले लेता है, उसका सिस्टम अलग है, जो लंबा लेक्चर उसको हम बाद में बताएंगे। वैसे मैंने कई बार बताया प्रोग्राम के अंतरियों से खुराक से वो तत्व कैसे निकाले जाते हैं, कैसे वो खून में शामिल होते हैं, या यूं कहा कि खून कैसे नया बनता है, ये सब बातें बता दी, वेस्ट जो है वो निकल जाता है। इसी तरह ही इसके चलन के हिसाब से ये जो खुराक हमने भेज दी शरीर में, इसका निवारण हो गया, इसका खून बन गया, अब ये खुराक सभी जगह पहुंचानी है तो काम किसका हो गया, हार्ट का हो गया, हार्ट ने पहुंचानी है, जहां जहां जिसकी खुराक की जरूरत है वहां पहुंचानी है। तब इस चलते हुए सारे रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट हो गई तो यकीनन अगर हम इसको बारीकी से बात करेंगे ना कि हम यहां से चले हैं, किस शहर को जाना है, रास्ते में कौन कौन से शहर आते हैं, कहीं रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं थी या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, उसे हम जान पाएंगे कि भाई कहां पर रुकावट थी, क्यों देर होगी। इसी तरह ही इस शरीर के जितने भी नौ सिस्टम है ना, उन नौ सिस्टम का अपना अपना एक चलन है, अपना एक रूटीन है कि उनको कैसे शुरू करना है और कैसे समाप्त करना है। एक साइकिल है ना, नाक से हवा आनी है, फेफड़ों में जानी है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड आनी है, बाहर निकल जानी है। इसी तरह खून खुराक लेकर पूरे अंगों में जाएगा, फेफड़ों से हवा लेगा, ऑक्सीजन लेगा, सारे अंगों में जाएगा, वहां से वापस आएगा। पेशाब खून से खून जाएगा किडनी में, इससे वो पेशाब फिल्टर करेगी और फिल्टर करके खून को वापस भेज देगी और जो वो पेशाब है उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगी। तो मतलब जितने भी सिस्टम है ना, नौ सिस्टम इस बॉडी में काम करते हैं, उनका अपना अपना एक चलन है। और एज ए डॉक्टर हम लोगों को ये पता होता है कि भाई किस किस सिस्टम का क्या क्या काम है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, वो एक रूटीन हो गया ना। और अगर उन रस्तों में बहुत आसान तरीका है, उन रस्तों में अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो फिर हमें बाहर क्या पता लगेगा, बाहर डॉक्टर के पास सुबह की बात है, सबसे पहले हमें क्या पता लगेगा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, किस सिस्टम के में जो नुक्स हो रहा है। तो वही बातें मैं आपको इन प्रोग्रामों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इतना आसान हो जाए, यार कोई बात नहीं, पता ही है जो हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज हो रही है, आसानी से आप जाएंगे उसके लिए जैसी मदद आपको चाहिए हॉस्पिटल में या किसी जगह, आप सीधे जाकर उसको ले सकेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो कह रहा है तो फिर आप वही कहेंगे, नहीं जी सडन हो गया हार्ट अटैक, नहीं जी सडन ही उसको स्ट्रोक हो गया है, अब तो बाहर से ठीक ठाक आया था, अब तो ठीक ठाक रोटी खा के बैठा था, अब उसको ऐसे हो। यही बातें आप सुनने को मिलती हैं और इन्हीं के लिए ही जो ये मेरे प्रोग्राम है ना, उनका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ये ना कहें अभी तो ठीक ठाक था, अभी तो अचानक ये ऐसा हो गया है, नहीं, आपको पता हो घर के जितने भी मेंबर हैं उनके शरीर में इस तरह की कोई भी अगर निशानी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और शुरुआती दौर में अगर आप किसी निशानी को जान लेते हैं और उसका उसी वक्त निवारण कर पाते हैं तो वो बहुत आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, समय टाइम पास कर देते हैं, तो आने वाले समय में और ज्यादा यह भयानक रूप हो जाएगा, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही बातें ये प्रोग्रामों में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात मैंने दर्द की बताई, दूसरी बात चेस्ट में प्रेशर होना शुरू हो जाता है, तीसरी बात टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है जितने जितने अंग हैं, और किसी अंग में कोई रुकावट होगी तो वो फैलेगा तो दूसरे अंगों को भी जगह लेगा, ऑटोमेटिकली उसको कंजेशन होना शुरू हो जाएगा या टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी। या अगर आप देखते हैं कि जैसे मैंने ये स्पॉट आपको बताए किसी के चेहरे में ऐसे है तो आप जान जाएंगे कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसको अभी से टेक केयर करना चाहिए नहीं तो किसी दिन इसको हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह ही आप देखते हैं आंखें पीली पीली हो गई हैं, अब पीली पीली होगी तो सभी लोग जानते हैं आंखें पीली होगी तो पीलिया हो गया भाई, जॉइंटिस हो गया जी, हम लोग मेडिकल टर्म उसको एक टेरिस बोलते हैं और वैसे जॉइंटिस बोलते हैं, आप लोग सब पीलिया सभी लोग जानते ही हैं। ये क्या है, ये शॉर्ट सी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वो है जो निशानियां बाहर आ रही हैं, अंदर क्या घटित हो रहा है वो हमें बता रहा है और उन्हीं से हम जान पा। अब मान लीजिए किसी के आंखों के नीचे से बहुत सी स्वेलिंग आई हुई है, ऐसे जैसे पानी से भरा भरा पिलपिला बैग रखा होता है, तो ऑटोमेटिकली आप ये जान पाते हैं कि पानी क्यों रुकता है, साल्ट डिप्लेशन हो गया। साल्ट का काम है पानी को चूसना, बरसातों के दिनों में ना अगर आप किचन क्या जो आपका नमक वाला है ना पॉट उसको अब थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, हालांकि ये अंदर है बरसात बार हो रही है, आप देखेंगे वो गीला हो जाएगा। इसको मॉइस्चर सक करने की कुदरती गिफ्ट है, कुदरती इसकी जो है ना कैफियत है और वो चूस लेता है, गीला हो जाता है। इसी तरह ही अगर कहीं पानी रुक गया है, अगर लगता है कि एक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई इसमें साल्ट रुक गया है, जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है। या कोलेस्ट्रॉल की बात मैंने आपको भाई वो पीले पीले से स्पॉट्स हो जाते, या किसी की टांगे अब आया चारपाई पे बैठा, फतेह पतोही हुई सब कुछ हुआ और उसने अपना जूते वगैरह निकाला चारपाई के ऊपर बैठा तो देखो उसके तो पांव ही सूजे हुए, उसकी टांग ही सूजी हुई है। तो आप जब इस तरह की निशानियां देखते हो ना तो ये सब आप सब लोगों को बताएंगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है, अगर इसकी टेक केयर ना की गई तो आने वाले समय में इसका कोई रूप भयानक हो सकता है। ठीक है, अगर खून सप्लाई नहीं जा रही है तो अल्टीमेट क्या होगा, आपने देखो कि ज्यादातर बुजुर्गों को, बड़े यंग बच्चों में तो कम होता है लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों में क्या होता है, उंगलियों के जो पोते हैं या टिप्स जिसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, या हमारे जो पाओ के उंगलियां हैं उनके फिस्ट बोलते हैं उनको, वो फिस्ट के आगे आगे सब कुछ ड्राई हो जाता है। जैसे कहीं खेत में हम पानी दे रहे हैं ना, तो पानी दे रहे हैं जहां तक पानी गया ठीक है, और कुछ ऊंचा टीबा रह गया, ऊंचा सी चीज रहेगी वहां पर पानी नहीं गया तो क्या होगा, वहां की फसल ठीक नहीं होगी, वो सूख जाएगी। इसी तरह ही जहां दूर के हिस्से में जिनको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट्स, ये जो हमारे टिप्स है ना ये हार्ट से सबसे दूर है, पांव हमारे हार्ट से सबसे दूर है, और इनमें जो सप्लाई मिलेगी जैसे नहर की टेल होती है ना वहां पर पानी बहुत कम पहुंचता है, उससे पहले जितने भी दाने लगे हुए हैं वो पानी खींच लेते हैं, पीछे पानी बहुत कम जाता है और वहां पर वो बोलते हैं टेलें तो सूख गई हैं। इसी तरह ही वो हमारे टिप्स फिंगर्स के जो सूखने शुरू हो जाते हैं तो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई दिल खून तो पहुंचा रहा है, या तो खुराक की कमी हो गई है और या जो पहुंचाने वाली मशीनरी है ट्रैफिक है वो उसमें कमी आ गई है, और इन चीजों से हम उसकी खोज करने शुरू कर देते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेस्ट की बात, क्योंकि चेस्ट में मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे वो फेफड़े हुए, हार्ट हुआ, और ये जो मीडिया साइनी के अंदर रहने वाले अंग है इसोफेगस हुआ, या ब्रोंकस ट्यूब हमारी हो गई, इस तरह की जो चीजें इनके जो साइन एंड सिम्टम पैदा होंगे वो यही होंगे कि भाई टाइटनेस हो रहा है, पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी, सडन स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड टाइप के फटीग, यार ठीक ठाक था यार अभी काम करने को मन नहीं कर रहा, बड़ी सुस्ती हो गई है। हाँ जी क्यों हो गई है? खुराक तो आपने खाई थी, खाना तो आपने खाया था, जो आप पहले करते थे रूटीन में वही आप कर रहे थे, बावजूद इसके लिए आपको खुराक, आपको फटीग क्यों होगी, आज क्यों थकावट होगी, पहले तो नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो खुराक, क्योंकि खुराक वही है जो पहले आप खाते थे, खुराक वही है जो दूसरों ने खाई है, वही आपने खाई है, लेकिन आपको फटीग होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नॉर्मल नहीं हुई बॉडी में, खुराक की, खुराक के जितने भी तत्व थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हुई। और अगर हमें ये लगे कि किसी खास तत्व की जो कमी पेशी हमारे दिखाई देती है ना, जैसे आयरन की कमी पेशी होती है तो हम आंखों के नीचे लिड्स देखते हैं तो वो जो है वो एनीमिक हमें दिखाई देते हैं, रेड नहीं दिखाई देते, जीभ देखते हैं वो रेड दिखाई नहीं देती है, इस तरह आयरन की जो और निशानियां हैं वो हम देखते हैं तो हम बोलते नहीं है इसमें वो उसकी कमी हैगी है, और कई साल्ट की कमी पेशी होती है तो क्रैक से आने शुरू हो जाते हैं हमारे फिंगर में, टिप्स में, यो बेड नेल जिसको हम बोलते हैं इसमें ऐसा होना शुरू होता है, सूत्रें सी उभरनी शुरू हो जाती है, ये क्यों हो जाती है? मतलब हमारे शरीर में इसको जोड़ने वाला जो काम था साल्ट का, वाइटामिन सी का, वो नहीं हो रहा। अब खुराक तो वही है जिससे पहले पूरा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये है कि हमें खोज करते करते ये पता चलेगा कि हमारी खुराक से या तो आयरन, या तो सोडियम, नमक वगैरह, या विटामिन सी, ये असिमिलेट नहीं हो रहे हैं बॉडी में, मतलब खून में खुराक से नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए इनकी सप्लाई आगे नहीं हो रही है। और फिर हम खोज उसकी करेंगे ना, उसका हल करेंगे, फिर हार्ट का तो नहीं ना करेंगे, हार्ट तो अपना काम कर रहा है, उसको तो जो आपने देना था दे दिया और वो आगे पहुंचा रहा है, लेकिन आपका जो आप दे रहे हैं हार्ट को उसमें ही कमी पेशी आ गई। तो इसी तरह हम खोज पता करते करते इस चीज पर पहुंचेंगे कि ट्रैफिक में चलते चलते रुकावट कहाँ है, खुराक हमने दे दी, आंतरियों में गई, आंतरियों से आंतरियों स्क्वीज करके जो मटेरियल चाहिए था बॉडी को वो खून में मिला दिया, उसका तरीका है वो आगे बताएंगे हम, और वो दे दिया, लेकिन या तो इस असिमिलेशन प्रोसेस के खुराक से निचोड़ कर जो तत्व इसको खून में मिक्स करने थे वो नहीं किए, या ऐसा हो सकता है कि आप जो खुराक खा रहे हो उसमें वो जरूरी तत्व है ही नहीं, कमी पेशी है। तो इसलिए डॉक्टर सप्लीमेंट देते ना, ये तुम आयरन के कैप्सूल ले लो जी, तुम विटामिन सी की गोली रोजाना लिया करो जी, ये तुम कैल्शियम की गोली, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, दे अज्यूम, वो सोचते हैं कि भाई इनको जो खुराक दी जा रही है उस खुराक में इन चीजों की कमी है, और अगर वो जाने कि भाई नहीं, खुराक तो इसकी बैलेंस है, जो खुराक है वो तो वही है जो दूसरे घर के मेंबर खाते हैं और उनको तो ऐसी कमी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है ना एनालिसिस करना, एक घर के एक ही मेंबर को वही दाल वही खा रहा है, वही सब्जी वही खा रहा है, वही रोटी वही खा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं आयरन की कमी हुई, दूसरों को क्यों विटामिन सी की कमी नहीं हुई, दूसरों के शरीर में कैल्शियम क्यों पूरा नहीं हुआ या हुआ है, तो इस एक शरीर में ये कमी पेशी क्यों हो गई है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसमें असिमिलेट नहीं हो रहा है। तो फिर हमने टारगेट कर लिया ना, हमने टारगेट कर लिया कि आंतरियों से इस तरह की चीज जिसकी निशानियां, क्योंकि हमारे पास निशानियां हैं कि कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, आयरन कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में विटामिन सी जिसको स्कर्वी वगैरह बोलते हैं, ये विटामिन सी कम होगा तो क्या होगा, सोडियम अगर कम होगा तो क्या होगा, या सोडियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब हम जानते हैं, और उसी की भाषा से हमें बाहर निशानियां उसकी दिखाई देंगी जिससे हम ये अंदाजा लाएंगे कि भाई इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसके शरीर में सोडियम की कमी है, तो भाई फिर हम खुराक की शिनाख्त तो कर सकते हैं, भाई तुमको ये खाना है, वो बोलता है ये तो मैं खा ही रहा हूं, और आज तो मेरी ऐसी नॉर्मल है और घर के मेंबर को किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब स्पष्ट हो गया आपकी आंतरियों में जो असिनी जो निचोड़ कर जो खुराक का निचोड़ निकल कर खून में शामिल होता, वो मसेंट्री का प्रोसेस है वो हम बताएंगे आपको, ऐसा है तो फिर नुक्स तो वहां पर हुआ ना, ब्लड में तो ना हुआ ना, हार्ट में तो ना हुआ, हार्ट का तो काम वो तो चल रहा है, जो आपने मुझे दिया वो मैं सप्लाई आगे कर रहा हूं। इसी तरह ही सांस की बात आएगी, इसी तरह ही किडनी की बात आएगी, इसी तरह ही जितने और अंग हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन में कोई कमी पेशी आ रही जिसको हम बीमारी बोलते हैं, किसी भी अंग में कोई कमी पेशी होती है उसके काम करने के ढंग में या काम का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, रिजल्ट क्या है, हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है तो 72 to 80 पर मिनट पल्पिटेशन हो रही है, और अगर कम कर रहा है नहीं सही कर रहा और आगे उसकी कमियां पीछे भी पैदा हो रही हैं तो फिर वो बीमार है, और अगर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा नहीं ये तो 100 times पर मिनट चल रहा है, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग इसी एरिया में। इसी तरह ही हमने ऑक्सीजन की बात आपको बताई थी कि ऑक्सीजन लेनी का काम है ना फेफड़ों का, इसको खून में मिलाना काम है फेफड़ों का, फिर ये खून वापस हार्ट को जाएगा और फिर हार्ट का काम इसको सप्लाई करना, बावजूद इसके भी वो डॉक्टर लोग देखा ना वो उंगली में लगाकर देखते कहते ये ऑक्सीजन पूरी है कि नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि जो खून की सप्लाई हार्ट से हो रही है शरीर को उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्योंकि तो हार्ट का तो नुक्स नहीं ना, हार्ट को तो जो मिला उसमें कंटेनर ने भर लिया, कंटेनर जिसको हम बोलते हैं आरबीसी रेड लाल खून के कण, ये हमारे खाली डब्बे होते हैं वेगेंट होते हैं और इसमें हम ऑक्सीजन भर के ले जाते हैं और दिल ऑक्सीजन इनमें भर के ले जाता है, अब जो पीछे से ये ऑक्सीजन नहीं आई है तो बेचारा क्या करेगा, तो खाली डब्बे जाएंगे, सांस फूलेगा और इसको बार बार, हार्ट तो यही कर सकता है ना कि मैं 72 से 80 बार एक मिनट में चलता हूं, नहीं भाई मैं 100 बार चलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जितना थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना ऑक्सीजन मैं उतना फटाफट पहुंचाता रहूं, और ऑक्सीजन देना या लेना किसका काम है आपका, फेफड़ों का, तो हम वहां पहुंच जाएंगे ना कि भाई फेफड़ों में इस तरह की कोई कमी आ गई है कि वो ऑक्सीजन तो बाहर देखोगे एनवायरमेंट से ले रहा है, उसके सांस लेने और फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में कोई रुकावट है, तो फिर हम उसे उस एरिया की फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि जो जनरल साइंस से उसमें इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट हो जाएगी, पल्पिटेशन हो जाएगा, ब्रीदिंग का हम जानते हैं कि भाई 14 से 16 बार पर मिनट एक में सांस को चलना चाहिए जिससे हमारी ऑक्सीजन पूरी होती है नॉर्मल आदमी में, अगर 14 से 16 नहीं को 20 बार 24 बार 40 बार, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको 40 बार सांस लेता है, क्यों, क्योंकि उसको उतनी जरूरत है। इसके हिसाब से यंग आदमी अगर 14 से 16 बार नहीं कम सांस ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, बार बार इंस्पिरेशन ऐसे कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो ग्रेस्प नहीं कर रहा, वो तो ग्रेस्प करके आगे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, तो फेफड़ों में कोई नुक्स होगा या रस्ते का जो एरिया है ब्रोंकाइटिस का उसमें कोई नुक्स होगा, तो हम लोकलाइज कर देंगे ना, तो उसकी निशानियां क्या आएंगी, आजकल तो टेक्निक्स आ गई ना ऑक्सीजन चेक करने की, या फेफड़ों को हम देख देंगे किसी को निमोनिया हो गया, किसी को ब्रोंकाइटिस होगी, किसी को प्लूरसी होगी और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन हमेशा पूरी हो ही नहीं सकती, तो ये सब निशानियां, और जैसे फिजिकल की बात हमने की है तो स्वेलिंग वगैरह एडिमा वगैरह ये सब इस बात की चीज है कि भाई जो वापसी वाली ट्रैफिक है, जो अंगों में खुराक गई है खून गया है उसकी वापसी होनी है, वो नॉर्मल नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो इसका मतलब है स्वेलिंग हो रही है, और ये जो स्वेलिंग होगी तो कहां से शुरू होगी, भाई बैकवर्ड पांव की तरफ हाथ की तरफ, जितने भी डिस्टल पार्ट हैं बॉडी के उनमें स्वेलिंग होगी, फिर वो आगे आगे बढ़ती आएगी, आगे आगे बढ़ती आएगी, और अल्टीमेट ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो चेहरे में भी आ जाए और चेहरे से पहले आपके हार्ट में आ जाए और जब हार्ट में आनी शुरू हो जाएगी तो उसके ऑटोमेटिकली जैसे फेफड़ों में आ गई तो सफोकेशन के साइन आ जाएंगे। इसी तरह जो है पेरिकार्डियम के साइन आने शुरू हो जाते हैं और बहुत से, इनको हम तरतीब में आपको बताएंगे एक एक करके। सिर्फ यही सोचने की जरूरत है कि अगर वापसी ट्रैफिक में कोई रुकावट है, अगर तो जाने वाली ट्रैफिक में रुकावट है तो उसकी निशानियां मैंने आपको बता दी कि आयरन कम है तो क्या निशानियां आएंगी, सोडियम कम है तो फिर क्या आएगा, और कैल्शियम कम है तो फिर हमारे शरीर में कैसे कैसे आएगा। और जो वापसी चीज आने वाली है, ये जो वापसी जाने वाली अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर जो स्वेलिंग होगी वो डिस्टल पार्ट हम उसको बोलते हैं जो हार्ट से दूर है, उनमें इस तरह की कंडीशन जो है आनी शुरू हो जाएगी। फिर नाखून की बात मैंने आपको कही थी कि भाई आमतौर नाखून फ्लैट होते हैं, आप देखिए अपने अपने नौ फ्लैट होते हैं, पर कुछ लोगों के नाखून ऐसे होते हैं जैसे एक बॉल होता है ना, कौली होती है जिसको हम बोलते हैं, हम किचन में रखी उसको अगर उल्टा बैठा रहे, उसका मुंह नीचे कर दें तो ऊपर को उभरा हुआ होगा ना, तो अगर किसी के नेल इसी तरह उभरे होते हैं तो उसका हम बोलते हैं क्लबिंग नेल्स। और ये जो क्लबिंग नेल हैं ये इस तरह के सूचक है, इंडिकेटिव हैं कि या तो फेफड़ों में या तो हार्ट में, मींस चेस्ट के एरिए में, चेस्ट के एरिए में कोई ना कोई इस आदमी को नुक्स है, मे बी बाय बर्थ मे बी आफ्टर दैट, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और फिर हम डेट्स वेज पूछते ही है भाई ये आपको कब हुआ या कैसे हुआ। और अगर वो बोलता है कि मैं जो बचपन था मुझे निमोनिया हुआ था, हाँ जी अब डॉक्टरों ने तो एंटीबायोटिक दे दिया होगा, अब डॉक्टरों ने तो अपनी ओर से उसको जमा कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो अंदर आपके जमा कर दिया जो एल्वोलाइज थी जिसमें ऑक्सीजन जानी थी वो जगह कम हो गई है, ल्यूमन अंदर का कम हो गया है। और अगर मान लिया जाए वो पहले एक लीटर ऑक्सीजन ले लेती थी, अब वो एक लीटर नहीं ले पाती, उससे सांस भी तेज होगा, उससे सांस जो दौड़ सकता था वो उतना दौड़ नहीं पाएगा, सांस ज्यादा फूलेगा दूसरे लोगों से। अगर जिम भी जा रहा होगा, मैं तो जिम जाता हूँ, अब जिम भी जाएगा तो दूसरे लोगों से ज्यादा उसका सांस फूलेगा। ये सब चीजें इंडिकेट करेंगी कि आपकी जो एल्वोलाई थी वो बचपन से लेकर या अब कुछ हो गया, तो या तो अब कुछ हो गया है उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जो हार्ट में इस तरह के जो नुक्स होते हैं उनको हम अलग अलग डिवीजन करके जानते हैं आसानी से कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो, या राइट साइड हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि लेफ्ट साइड का काम और है राइट साइड का काम और है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम कंजेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिनको बचपन से ऐसी कोई चीज हुई है, और वो भी हम डिटेल में आप सालों को बताएंगे कि क्या कैसा हो सकता है, फिर उसकी निशानियां क्या हो सकती हैं। और ये जो मोटी या कंजेस्ट कई बोलते CHF, बड़ा सुना होगा नाम अपने लोगों को, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों ऐसा होता है, उसकी और सब क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। ये बात मैंने शुरू में कह दी थी कि कुछ भी अचनचेत नहीं होता, उसकी निशानियां उससे पहले हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इतने जानकार हो जाएंगे, जैसे जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, नाखून आपने देखकर ड्राई हो रहे हैं, या नाखून में क्रैक्स आ रहे हैं, या नाखून क्लबिंग नेल्स हैं, या चेहरे में पीलापन है, या जो है स्पॉट्स बने हुए पीले पीले रंग के, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये हमें बता रही हैं कि अंदर का सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वो हम ठीक ठाक कर लें, जान पाए उसको, तो जब ठीक कर लिया तो फिर हार्ट अटैक कोई नहीं कहेगा कि मुझे सडन हो गया। नहीं प्रबंध कर पाए अलग बात है, नहीं उस तरह का उपचार मिल पाया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जान गए हैं और उसका उपचार कर पा रहे हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कहो इसको तो सडन स्ट्रोक हो गया, इसको तो सडन हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो आम तौर पे छाती में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो लोग सडन बोलते हैं, सडन तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी वक्त कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड परस्पिरेशन, पंजाबी में उसको बोलते हैं त्रेलियां आना, ठंडे पसीने आना, इस तरह की कंडीशन जो है हो सकती है। ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि भाई इसको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्वेटिंग वगैरह का कंडीशन पैदा हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की मैंने आपको बोल ही दी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ केवल फेफड़ों की वजह से नहीं ना होती, हार्ट की वजह से भी होती है, क्योंकि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और आगे सप्लाई करना, और उसका हार्ट का काम है, अगर कम सप्लाई की है उसने तो फिर हार्ट का काम है, अच्छा भाई तुम जल्दी जल्दी मुझे सप्लाई करते रहो, मैं जल्दी जल्दी आगे देता रहूंगा, तो पैल्पिटेशन साथ में होगा, दिल का ज्यादा धड़कना नॉर्मल से ज्यादा धड़कना ये साथ साथ होगा। तो इस तरह की जो निशानियां हैं ये सब हम आप जान सकते हैं, और कुछ हालातों में ऐसा हार्ट चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा कि हार्ट बीट या पल्स तो सभी देखना, बीमार हो ना कोई तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, सभी लोग पकड़ लेते हैं, तो आमतौर पर आपका जो अंगूठे वाला हिस्सा है ना, अंगूठे के जहां बेस है अंगूठे का, वहां पर अगर आप दाहिने हाथ का बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे रिस्ट में अगर हाथ रखेंगे, आपकी ये तीन उंगलियां आपको बता देंगी कि नीचे जो पेल्पिटेशन का जो पल्स चल रही है वो आर्टरी है, वो जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, क्या रेगुलर चल रही है कि इररेगुलर चल रही है। अगर इररेगुलर चल रही है, तेज चल रही है, तो ये हमें साबित करेगी कि हार्ट नुक्स हार्ट में नहीं है, वो तो चल रहा है, नुक्स फेफड़ों में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इसी तरह ही अलग अलग वाल्व्स की जो अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कहां से कहां वाल्व खून भेजता है, अगर उसमें कोई नुक्स हुआ तो निशानियां क्या होंगी, और कहां से कहां कोई वाल्व खून भेजता है दिल में, और अगर उसमें कोई नुक्स हो गया तो निशानियां क्या होंगी, ये आने वाले चैप्टर में ऐसा हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आमतौर पर ये जो सिम्टम है हार्ट के, क्योंकि हार्ट का पर्पज क्या है, मेन पर्पज हार्ट का ये है कि जो खून आ गया वापसी वाला उसको फेफड़ों में पहुंचाना, पहली बात जो खून सारे शरीर से वापस आ गया है उसको फेफड़ों में पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी वहां से लेकर जा रही है खून फेफड़ों में, और मान लिया जाए फेफड़े को निमोनिया हुआ है, फेफड़ों में तो सूजन हो गई है, फेफड़ों में तो ब्रोंकाइटिस है, या किसी भी तरह वो जो एल्वोलाई जो इस खून को ग्रहण करेंगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मौका देंगी और इसमें बाहर से आए सांस से ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगी, वो कम होगी, उसमें सूजन आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीछे बैकलॉग लग जाएगा ना, कहते इतनी तो ऑक्सीजन जा नहीं रही, बैकलॉग लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि वो जो पल्मोनरी वो जो नाड़ी है जिहड़ी राइट वेंट्रिकल से लेकर खून फेफड़ों में जा रही है उसमें बैकलॉग लग गया है, उसकी अलग निशानियां हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आसानी से आप जान पाए स्वेलिंग है, डिस्निया है, वीकनेस है कि फटीग हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, हैवीनेस ऑफ बॉडी लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया है, नेल की बात मैंने अभी आप सब लोगों को बता दी है, और नेल ब्लू हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये पूरे के पूरे हार्ट और लंग्स के साथ कंसर्न्ड हैं। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको अलग अलग करके बताने वाला हूं कि ये तो सभी निशानियां थी ना, पल्पिटेशन, फ्लटरिंग, वीकनेस, डिजीनेस, नाजिया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बता चुका हूं आप सबको इन पहले प्रोग्रामों में, पर ये सब हो रहा है तो मतलब इसका स्पष्ट है कि छाती में ही कोई नुक्स है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, अब जब आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्ट से। तो हार्ट है उसके बारे में हम जानते हैं, मैं फिर दोबारा उसको जब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ना तो उसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हार्ट की सरफेस एनाटॉमी क्या है, कहां पर है हार्ट, और हार्ट का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कहां पर क्या क्या चीज, बाहर से देखेंगे तो कहां पर क्या चीज हमें दिखाई देगी, हमारा कितने सारे वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, दूसरा फोरामेन ओवल है, उसमें सेमीलूनर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व है, सेमीलूनर एओर्टिक वाल्व है, ये सब चीजें जितनी भी हैं कहां कहां पर है, बाहर से आप कैसे जानेंगे कि कहां पर है, और मान लिया जाए इनमें से कोई नुक्स हो गया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पल्मोनरी की अभी बात की ना, तो ये भी एक अलग चैप्टर है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, आपको बाहर कैसे पता चलेगा जी। तो ये सब चीजें अगले आने वाले चैप्टर में मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि हार्ट को हम समझ, हार्ट अटैक हो गया जी, सभी लोग ये जानते हार्ट अटैक हो गई। अरे भाई हार्ट अटैक हो गया तो उसकी अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि हार्ट का सर्कुलेशन जो है वो डिवीजन में है, वो दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे खून उसको मिलता है ना हार्ट को, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी का जो मेन पंडर है वो आगे डिवीजन हो जाती है दो भागों में, ये इसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलती है। अफसोस की ये बात है कि राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से मिलती ही नहीं है, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करती है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में कोई नुक्स हो गया तो हो गया भाई तेरा, तुम जानो, बाएं में हो गया तो उधर तुम जानो, मेरा तेरे के साथ लेने देने कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जो है ना रोटी बेटी की सांझ नहीं है तुम्हारी, यही शरीर में ऐसा चलन है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, इसको अलग, बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये कोरोनरी आर्टरी के साथ संबंधित है। किस तरफ सप्लाई नहीं हुई, किस तरफ के अंग जो है वो काम नहीं कर रहे या वाल्व काम नहीं कर रहे, उसके साथ संबंधित है। और वो मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो क्या साइन आएंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो हाल आएंगे इन्हीं में से, ये जो मैंने अभी सब आपको बताया ना, जिसको फिर मैं बोल दूं, पेन है, प्रेशर है, टाइटनेस है, सडन स्वेलिंग हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड फटीग हो गई है, डिजीनेस हो गई है, इररेगुलर या रैपिड पल्स हो गई है, नौजिया वगैरह होना शुरू हो गया, जी कचर वगैरह जिसको हम बोलते हैं ऐसा होना शुरू हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये इनिशियल स्टेज में सभी के साथ ही, लेकिन कुछ तो इंडिविजुअल होगा ना भाई, कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि हम इसको फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को बोलते हैं राइट साइड, हालांकि ये डॉक्टरों का प्रेरोगेटिव है, डॉक्टर लोग अस्पतालों में जाते हैं और वो फिर चेक करते हैं फिर वो बोलते हैं, लेकिन ये निशानियां वो हैं जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि भाई इन जनरल पैदा होंगी, इन जनरल पैदा होंगी जब आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम या छाती में कोई प्रॉब्लम आएगी। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं ये हार्ट की है, ये छाती की है। फिर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट के हमने तीन डिवीजन, बल्कि चार ही डिवीजन मैंने कर दी, और चार डिवीजन में मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंजेनिटल हार्ट फेलियर जो बच्चों को होता है आमतौर पर बचपन से लेकर ही होता है, और वो फोरामेन ओवल की बात होती है, वो हम इसको बताएंगे, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सारा खून वहां इकट्ठा हो रहा है लेकिन जाने वाला रास्ता रुक गया है, जाने वाले रास्ते में कोई रुकावट आ गई है और पूरा प्रेशर नहीं बन रहा, मतलब जिधर भी ट्रैफिक रुक गई, जिस तरफ जाने वाली ट्रैफिक में कोई रुकावट आ गई उसको हमने ट्रेस करना है, कहां हो गया, किसी ने कोई बांध तो नहीं दिया, आर्टरी जो है वो तो डीप है, अब इसके छेती बटी जल्दी से ऊपर से प्रेशर जो आप डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए, क्योंकि वो डीप बनाई कुदरत ने कि इसका प्रवाह जो है रेगुलर चलता रहना चाहिए, और ऊपर से बांधेंगे तो बंद होगी ज्यादातर वेन जो खून वापस लेकर जा रही, जो खून लेकर आ रही है वो सभी नाड़ियां डीप होती हैं, और ऊपर से बांधने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती रहती है। और इस सब चीजों का जो हवाला है वो हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ साझा करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, और मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899, किसी भी वर्ग तक कोई बीमारी के सामने आप परेशान हैं और लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा आपको लगता, तो अब सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक की एक साइंटिफिक अप्रोच है शरीर की, ये नहीं है कि आपको कब्ज है ये लो दवाई, आमतौर पर ट्रेंड क्या चल रहा है यही है ना कि सिर दर्द है आ लो दवाई, कब्ज है या ये लो दवाई, अलग अलग आप नाम लेंगे और डॉक्टर कहेगा अच्छा जी ये लो दवाई। होम्योपैथिक सिद्धांत है इस शरीर को एक सिंगल यूनिट मानता है, इसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो सिंगल है इसको कंट्रोल करने वाली, वो जो निकल जाती है तो आंख नाक मुंह ये सब वही रहते हैं लेकिन ये काम नहीं करते। इसका मतलब इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है हमको तो उसको डील करना है यार, अगर सही चल रहा है तो भी उसकी वजह से चल रहा है, अगर गलत चल रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर ही ठीक नहीं है तो बाकी नीचे का प्रोग्राम तो कैसा सही नहीं चलेगा, और अगर वहां कोई नुक्स हो गया है कमांड नहीं चल रही है तो फिर हम सीएम को ही बोलेंगे, तो हम सीएम के सामने ही बात रखेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग इस शरीर को सिर से लेकर पांव तक क्या क्या नुक्स हो गया, कहां कहां नुक्स हो गया, इस चीज की शिनाख्त करने के बाद ही आमतौर पर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि एज ए होल निशानी क्या हुई, एज ए होल नुक्स कहां हुआ और उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब है। तो आना और जाना है, और आने और जाने किसी की फंक्शन में, किसी की इलेक्ट्रिसिटी में, किसी की करंट में, चलने के प्रवाह में कोई रुकावट आएगी तभी तो बीमारी आएगी ना किसी अंग में, तो यही सब हमें शनाख्त करना होगा। पर आसान तरीका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, पर हाँ अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये समझने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। और अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ये बात आप दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं ताकि वो लोग भी इन चीजों को जान पाएं और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएं, और अगर बीमार भी पड़े तो एंशियस ना हो, परेशान ना हो, उनको पता हो कि भाई इसके पीछे ये कारण है, इसको हम पहले ठीक कर सकते। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच
2: जी। थैंक यू
0: मैम जी, थैंक यू। चीमा साहब आ गए ने
1: जी, चीमा साहब नाल ही सी ताडे, बड़ी मेहरबानी। अच्छा। जी मिलदे हैं जी परसों, फिर सुनते हो ताडा भी धन्यवाद, इसी तरह सुन लिया करो प्रोग्राम नु, बड़ी
0: मेहरबानी। हां हार्ट की गल चलनी है, ध्यान ना सुन लियो फिर
1: जी। सर थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज प्रवास रेडियो दे उपर न्यूयॉर्क स्टूडियो तो, मैं हां ताडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह काका। सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत कर दे, तुहानू पता है कि एक दिन छड के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम कल नहीं सी कीता, अज कीता, कल नू फिर नहीं करांगे, परसों नू फिर करांगे। सो ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7:06, ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, 4-5 ਗੀਤ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ।

रास्ता पेश कर रहा हूं। जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायद है, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

0: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बात हसीन है अम्मी,
0: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
1: खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पे जाने कौन देगा?
2: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं अमीना बाई।
1: अमीना बाई तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता।
3: नालायक बदमाश, इज्जत के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान
1: डालो। वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं।
3: क्या कहा?

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

फेफड़ों की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो ये इससे रास्ता ले लेते हैं, तो फिर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाती है, जैसे घुटन आ जाती है कि तुम थोड़ा हटो यार पास से, वो उसके पास से अलग हटने से थोड़ा बहुत इसमें टेढ़ापन आ जाता है और डाइवर्शन हो जाता है। तो इस तरह के डाइवर्शन जो है चार जगह हमने नोट किए थे कि इसमें चार जगह के डाइवर्शन हैं, और जहां से ब्रोंकस इससे अलग होती है, उसके बाद जहां से वेना केवाज आती है, जहां से एओर्टा पास करती हैं, और कुछ पोर्शन हार्ट का भी है। तो इस तरह ये चार मेन जो इम्पोर्टेंट डाइवर्शन है जहां पर ईसोफेगस को कहा जाता है कि यार थोड़ा सा रास्ता दो मुझे, है। तो इस हिसाब से जो ये छाती के अंदर का जो सेंट्रल पोर्शन था जिसको मीडियास्टाइनम हमने कहा था, ये मीडियास्टाइनम वाला पोर्शन जो है इसमें इतने इम्पोर्टेंट अंग हैं लेकिन कॉमन पार्ट भी है। उसके बाद हमने ये आपको बताया था हार्ट के बारे में और हार्ट के मसल्स कैसे हैं, हार्ट के चैम्बर कितने हैं, हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से आता है कहाँ जाता है, कैसे इसमें सर्कुलेशन चलन होता है, इसके जो वाल्व्स हैं उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में बता दी, बहुत से प्रोग्रामों में बता दी कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, तीनों लैंग्वेज में मैंने ये चीज एक एक प्रोग्राम में बता दिया कि हार्ट को, क्योंकि हार्ट को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, है भी इम्पोर्टेंट ऐसा ऑर्गन है ना, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने इसके लिए आपको डिटेल बार बार दोहरा दी। फिर भी अगर किसी सज्जन मित्र को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो वो अलग से फोन करके पूछ सकता है 4086871899। किसी भी वक्त जितनी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी सिस्टम में, चाहे ब्रेन की बोलूं, चाहे गले के बारे में बोलूं, चाहे छाती के बारे में बोलूं, या एब्डोमेन के बारे में बोलूं, किसी भी वक्त किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है या उसके बारे में कोई शंका है या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि और जानकारी मिले, तो आप किसी भी वक्त मेरे से फोन पे बात करके और उसका हल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें जितनी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे ब्रेन में सेट की हुई है, इनके लिए मुझे किताबें खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। हाँ, विषय जो मैंने करना है वो ठीक मुझे देखना पड़ता है कि आज मैंने क्या करना है। जैसे हम लोग छाती पर पहुंचे हैं तो छाती के जो मेन मीडियास्टाइनम को कवर कर लिया, हार्ट को कवर कर लिया, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है यहाँ पर वो चेस्ट है, सॉरी लंग्स है। तो लंग्स के बारे में बात करते हुए आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, हालांकि हमारा जीवन ही हवा है, दम आया तो हम हैं आदमी हैं, दम नहीं आया तो हम डेड बॉडी हैं। तो वो दम को चलाने वाला जो ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। तो शरीर में जो लंग्स है ना वो दो है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, और आम लोग सभी ये तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी और बहुत सी बारीकी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के प्रोग्रामों में, कि एक तो इसका कलर पिंक होता है, एक ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं, और ये जो बातें हैं बेशक आम आदमी की जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग एटॉप्सी करते हैं या जो लोग बायोप्सी करते हैं उनके लिए, जो डॉक्टर लोग जो जिंदा पीस लेकर चेक करते हैं कि उसमें क्या खराबी आ गई है उनके लिए, या एटॉप्सी डेड बॉडी की जब छानबीन करते हैं ये कैसे मरा क्या हुआ जो वो होता है उसको एटॉप्सी बोलते हैं, तो वो एटॉप्सी जब करते हैं उनके काम की चीज है कि कैसे मरा क्या हुआ इसमें रंगत कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसका जाना जाए कि रंग नॉर्मल रंग क्या है। तो नॉर्मल रंग इनका पिंक होता है, स्ट्रक्चर उसका जो स्पंजी होता है सॉफ्ट होते हैं, और आमतौर पर हमने बार बार कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये प्रेस किए रहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आना शुरू होता है और जो हमारे एनवायरमेंट का जो 480 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर उस पर पड़ता है तो एकदम उसकी चीख निकल जाती है ऑटोमेटिक, और उसी चीख की वजह से बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है, और बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है और ये फूल जाते हैं, ये फूल जाते हैं, केवल ये ही नहीं फूलते, इनके साथ और बहुत सा स्ट्रक्चर चालू हो जाता है जो पहले बंद था। जैसे मैंने कहा कि सारे शरीर का खून इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में हार्ट के ऊपर वाले खाने में आता है, और उसके बाद वहां से फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर एक नाली निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और वो फेफड़ों में लेकर जाती है। इसमें जो वाल्व लगा हुआ है वो बेचारा दरवाजा इस टाइप का है, आप वैसे तो दरवाजा हो ना, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, लेकिन ये दरवाजा एक ही तरफ खोलता है। जितने भी हार्ट के अंदर सेमीलूनर वाल्व है
वो सभी एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं। तो इसमें एक सेमिलूनर वाल्व लगा है जिसकी वजह से ये खून जितना भी राइट वेंट्रिकल में आया वो फेफड़ों में जाना शुरू होता है, तो पंप हुआ फेफड़ों में गया, वापस नहीं आ सकता, उसमें वापस दूसरे पासे से शरीर से जो आ रहा है खून वही आएगा हार्ट में। तो इस तरह का जो चलन इस चीज का है फेफड़ों का, ऐसे इनको खून मिलता है। अब उसकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है ना वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। एक तो ये मैंने कहा कि लंग्स दो होते हैं, एक को राइट लंग बोलते हैं एक को लेफ्ट लंग बोलते हैं। इनकी जो शेप होती है, स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। इसकी जो शेप अगर देखें बाहर से, तो बाहर से जो शेप इसकी जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं जी, पिरामिड की तरह ऊपर को चोटी है, बीच को जो चौड़ाई है बढ़ती जाती है, नीचे बेस आ जाता है। लेकिन बेस की एक इसकी और खासियत है, बेस इसका डोम शेप है। ऐसे ना कि बेस ऐसे नहीं कि लाइन सीधी आ गई, ऐसा नहीं है, ऊपर त्रिकोण है, कोण बना हुआ टॉप में, जो वहां पर हमारी हसली की हड्डी है उसके नीचे आता है, और नीचे जैसे जैसे आता है ये थोड़ी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जैसे नीचे इसका बेस आता है तो बेस के अंदर गुंबद की तरह है, जैसे मंदिर में या गुरुद्वारों में गुंबद ऊपर बने होते हैं ना तो अंदर से खाली होते हैं, तो इसी तरह जो अंदर का जो बेस है नीचे का वो गुंबद की तरह है। और ये क्यों है, इसलिए कि राइट साइड में फिर पसलियों के नीचे ही, क्योंकि इसका एरिया तो पसली के अंदर अंदर है ना, अपनी जो रिब्स है उनके अंदर अंदर है, और उसके राइट साइड में हमारा लिवर होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन लिवर का जो राइट साइड में होता है, हालांकि कुछ जो है लेफ्ट लोब जो है वो बाईं तरफ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, और बाईं तरफ स्प्लीन होती है, तिली जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो इसलिए अंदर से बेस जो इसका है फेफड़ों का वो डोम शेप इसी तरह का बना हुआ है। दूसरा इसकी शक्ल में एक अंतर है कि जो राइट लंग है ना वो हाइट में कम है। हाइट में कम क्यों है, क्योंकि लिवर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नीचे है, कवर कर लेता है पसलियों को, और वो बहुत बड़ा पोर्शन नीचे पसलियों का जो कवर कर देता है तो फिर भाई इसके लिए स्पेस ऊपर कम बच जाती, लेकिन ऊपर वाली स्पेस बेशक थोड़ी बचती है लेकिन उसके भी तीन पोर्शन है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, तीन लोब। लोब का मतलब है हिस्से, और अलग अलग हिस्से, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना नहीं। अगर वो जो संबंध है अंदर ब्रोंकस से ही है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको, सो डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं होता। और जो हमारा बायां लंग है, बायां फेफड़ा है तो उसकी भी अजीब रचना कि वो होता तो थिन है, पतला होता है, लंबाई में राइट लंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि स्प्लीन बहुत छोटी है, थोड़ा कवर करती है पसलियों का, और ऊपर से लेकर हमारी क्लेविकल की हड्डी से लेकर नीचे तक जाते जाते ये काफी राइट लंग से लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें एक और है, मीडियल साइड, मीडियल साइड हम उस चीज को बोलते हैं जो किसी के सेंटर के नजदीक होती है, और इसका दूसरा नाम ये होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो दूर होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। मैं और आसानी से समझा दूं आपको, अगर हमने हाथ का बात करने हो तो हाथ बॉडी से डिस्टल पोर्शन है, दूर का हिस्सा है, शोल्डर है ये हमारा मीडियल पोर्शन है, मिडल का पोर्शन है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो फेफड़ों की बात अंदर आ गई तो फेफड़ों का जो पसली जो हमारी स्टर्नम है सामने छाती की हड्डी है जो इसके नजदीक है उसको हम इसको मीडियल पोर्शन बोलेंगे या प्रॉक्सिमल हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। और जो दूर का बाहर का पसलियों के साथ लगा हुआ इनका हिस्सा है बाहर का उसको हम डिस्टल पोर्शन बोलेंगे। तो ठीक है, ये राइट साइड में जो मीडियल पोर्शन है, लेफ्ट लंग्स का जो मीडियल पोर्शन है वो अंदर से खुरचा हुआ है, ऐसे जैसे किसी को बीच में काट दिया हो। वो काटने का मतलब ये है कि उस हिस्से में हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट ने बहुत सारा हिस्सा फेफड़ों का ले लिया है, वो बाईं तरफ ले लिया है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जब हार्ट की बात मैंने करी थी तो मैंने ये कहा था कि हार्ट की जो बाउंड्री है बेशक ज्यादा बाईं तरफ है,
हमारी हार्ट में ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है ना, इससे सीधे 3.5 इंच अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की आखिरी बाउंड्री के तेरी हद यहाँ पर है भाई, वहां तक हार्ट की बाउंड्री होती है लेफ्ट वेंट्रिकल उसको हम बोलते हैं। और दाहिने साइड में हम बोलते हैं कि दाहिने साइड में तो हार्ट नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे हमारी सामने की छाती की जो हड्डी है ना, इसको हमने स्टर्नम कहा था। इस स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में भी हार्ट को जगह मिलती है, जो राइट दाहिने फेफड़े से मिलती है। तो मतलब इस तरह की ये इसकी हार्ट की पोजीशन है, जो हम बाहर से भी जान सकते हैं, अगर किसी की छाती को देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बाहर, पेंसिल अगर लाइन लगानी हो तो हम लगा सकते हैं कि ये हार्ट की बाउंड्री यहाँ यहाँ पर इसकी है। तो मतलब क्या हुआ कि बाईं तरफ का फेफड़ा वो इसी तरह नीचे से कर्व्ड बना हुआ है, कर्व की तरह है, क्योंकि वहां पर हार्ट को एडजस्ट कर दिया गया। तो दूसरी एक अलग बात यह है कि लेफ्ट फेफड़े में 2 लोब होते हैं, राइट में 3, बाएं में 2 लोब होते हैं, और 2 लोब जो होते हैं उनमें भी पोर्शन जो है नीचे वाले लोब का ज्यादा पोर्शन हार्ट ने कवर किया है। एक और बात इसमें अजीब बात है कि ऊपर वाला जो लोब है उस लोब से एक छोटा सा पोर्शन अलग नीचे को आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअला, लिंगुअल बोलते हैं जीभ को, लिंगुआ जीभ का दूसरा नाम है, लैटिन वर्ड है। तो लिंगुआ का मतलब है जीभ, जैसे हमारी जीभ होती है इस तरह का एक छोटा सा पोर्शन लेफ्ट लोब के ऊपर वाले लेफ्ट लंग के ऊपर वाले लोब से आकर हार्ट को और सेपरेट कर देता है फेफड़ों से, भाई ना ना ना तुम आगे नहीं आना, यहाँ पर ये बाउंड्री है इसकी, और वहां पर भी फेफड़ों का थोड़ा हिस्सा है जिसको हम लिंगुला बोलते हैं। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई है तो इसके भी 3 ही है ना, नहीं 3 नहीं है, लोब 3 नहीं है, क्योंकि लोब की जो डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बताने वाला हूं कि जितने भी लोब है ना फेफड़ों में, राइट में हमने 3 बताया, लेफ्ट में हमने 2 बताए, और एक ये लिंगुला बताया, इसको लिंगुला को हम लोब नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है ना वो ये पूरी नहीं करता। वो क्या है कि जितने भी ये फेफड़े हैं, या वैसे भी मैंने ये कहा था कि जितने भी अंग हैं शरीर में सभी अंगों को कुदरत ने एक गिलाफ में लपेट कर वहां पर रखा हुआ है, ताकि उनको पता रहे कि मेरी आखिरी बाउंड्री ये है। और इसी तरह ही फेफड़ों को भी ऊपर से कवर किया हुआ है, और उसका नाम है प्लूरा। प्लूरा एक गिलाफ की तरह है, जैसे गिलाफ रजाई के ऊपर हम चढ़ाते हैं ना, तो 2 लेयर होते हैं, उसके अंदर हम रजाई को डाल देते हैं, सिरहाने के 2 लोब होते हैं, उसके अंदर सिरहाना डाल देते हैं। तो इसी तरह ये इसके 2 लोब होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरा, जो हार्ट के ऊपर था उसको पेरिकार्डियम में कहा था हमने, और इसको हमने प्लूरा कहा था। और ये जो प्लूरा है इसके 2 पर्दे मैंने आपको बताया, एक तो बाहरी पर्दा है जो पसलियों के साथ लगता है, दूसरा पर्दा जो है वो हर एक लोब के अंदर जाता है, यही डिफरेंशिएशन हो गया कि ये तीसरा जो मैं लिंगुला बताया है ये लोब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो मेम्ब्रेन जा नहीं रहा, जो अंदर का मेम्ब्रेन है इस प्लूरा का वो हर एक लोब के अंदर बाहर जा रहा, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर रहा है कि ना भाई तू दूसरे लोब के साथ अटैच नहीं होगा, ना तेरा अलग बाउंड्री है उसकी अलग बाउंड्री, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर का लेयर जो है वो फेफड़ों के अंदर सेपरेशन करता है उनको, लेकिन इस लिंगुअल को तो इस तरह का कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ये एक सेपरेट सा चीज हो जाती है, सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर कई प्रॉब्लम हार्ट फेफड़ों को आ जाए तो कम से कम हार्ट उससे भी जरूरी है। खुराक बेशक हमारे घर में पड़ी रहे और हमको खाने नहीं को देगा तो वो कैसे होगा, तो हार्ट ने तो सारे शरीर को खाने के लिए देना है, इसलिए इसको कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने एक छोटी सी जीभ की तरह का छोटा सा पोर्शन लगा दिया। सो मैं ये कह रहा था कि हर एक फेफड़े के ऊपर कवरिंग किया हुआ है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं,
बाहर का जो उनका लेयर है वो पसलियों के साथ साथ पूरे को कवर करता है, अंदर का जो लेयर है वो हर एक लोब के अंदर, यहाँ पर लोब का हिस्सा है इसके अंदर कवर करेगा, फिर बाहर आ जाएगा फिर दूसरे लोब को कवर करेगा, ताकि लोब का आपस में कोई कनेक्शन ना रहे। और अगर इनका कोई कनेक्शन है तो वो जो सांस की नली ऊपर से आ रही है जिसकी बात मैं अभी करता हूँ, वो वही कनेक्शन इनका रहेगा, डायरेक्ट इनका आपस में कोई कनेक्शन लोब्स का नहीं रहता। तो तीन लोब राइट साइड में, दो लोब हमने बताए बाएं फेफड़े में, तो इनके अंदर जो अंदर का लेयर है ये अंदर जाता है लोब के अंदर, और फिर क्योंकि फेफड़ों को फैलना है, नीचे को भी ऊपर को भी, नीचे को भी ऊपर को भी, बाहर को भी फैलना है, जैसे हवा जाएगी उसी तरह वो फैलेगा, तो फैलने के लिए फ्रिक्शन ना हो, जैसे हम तेल डालते हैं उसमें मोबिलाइल, इसकी मोबिलाइल डालते हैं, तो मोबिलाइल डालने का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ना हो, या इसका तेल का कोई इंजन को नुकसान ना हो। इसी तरह कुदरत ने इसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको इंटरस्टीशियल फ्लूड हम बोलते हैं, जिससे लुब्रिकेशन रहती है, जब फेफड़े खोलते हैं हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इंस्पिरेशन होता है और उससे फेफड़े फैलते हैं और पूरी जितना उनका एरिया है उसको कवर कर लेते हैं, तो वो टच करेगा उसको बाउंड्री को, जो बाहर की बाउंड्री है, तो उसको रगड़ ना लगे क्योंकि इसके अंदर का भी लेयर है। तो इसी तरह ही जो फेफड़े खुद इट्सेल्फ लोब भी फैलते हैं, तो लोब में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोब्स के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया, पहली तो बात लोब की बता दी कि राइट साइड के तीन लोब हैं, बाई तरफ के दो लोब हैं, एक छोटी सी स्लेट है जिसको लिंगुला हमने बोल दिया है, और इनका कवरिंग जो है उसको हमने प्ल्यूरा बोला है, और प्ल्यूरा के दो लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड रहता है ताकि अंदर के जितने भी अंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे स्टोमिक हो, चाहे लिवर हो, जितना भी इनको फैलना है, जिनकी बाउंड्री है, बाउंड्री में फैलने के बाद दूसरे अंगों को इसकी कोई तकलीफ ना हो, ये इसकी बाउंड्री। और उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि ये ऊपर की तरफ जो बने हुए पिरामिड की तरफ बने हुए एपेक्स जो है, जब आप अपनी हसली की हड्डी और सामने स्टर्नम की हड्डी को यहाँ पर आप टच करेंगे ना, और इसमें एक गैप है हसली की हड्डी और पहली पसली के बीच में, वहां तक इसकी टॉप जाती है। ये मैं खास तौर पे ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि हवा ज्यादातर जाकर अगर कहीं रुकती है, जिसको हम इम्फाइसेमा बीमारी का नाम लेते हैं, वो ज्यादातर ऊपर वाले हिस्से में रुकती है, और इसलिए वो अपेक्स में जैसे हवा जाती तो है, हवा का काम ही है ऊपर को जाना, भारी चीज को नीचे को बैठना है, तो ऊपर जितनी भी गैसेस या वगैरह कुछ होती हैं और वो ऊपर को जाती है, पेक्स तक चली जाती हैं, और लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन है, कुछ ऐसी सोज हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है वो हवा ऊपर गई यहाँ बिल्कुल टॉप में और यहाँ पर ही आकर रुक गई और फिर वो वापस नहीं आ रही, क्योंकि सोज हो गई फेफड़ों में, सूजन होने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्फाइसेमा। इस तरह की प्रॉब्लम उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन के आपको ये बताया, उसके बाद हाइलम की बात भी मैंने बता दी कि जो मीडियल पोर्शन है जहां लंग्स को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन नाक से आ रही है, जहां फेफड़ों को खून सप्लाई करने के लिए उसकी आर्टरी आ रही है, जहां से बाहर जाने के लिए वेन्स जो इसका गार्बेज इकट्ठा करके बाहर लेकर जा रही है वो आ रही है, तो वो जो हाइलम है, जैसे हमारी नाभि होती है, तो नहीं होती है नाभि, तो नाभि की तरह एक ऐसा एरिया होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि राजमा, देखा होगा आपने राजमा का एक अंदर का हिस्सा होता है ना, जैसे वो राजमा की तरह अंदर का हिस्सा बना हुआ है, वो उतने उस एरिए में ही जितने भी ब्लड वेसल्स अंदर जाने वाले हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स बाहर जाने वाले हैं, जितनी भी नर्व्स अंदर जाने वाली हैं, ये सभी के सभी उस इतने छोटे से एरिया के अंदर अंदर पास करते हैं और उसी एरिया में ही उनका
आगे आगे पीछे किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं है, सारी एंट्री जो है इसमें वहीं से होती है, उसको हमने हाइलम बोल दिया। उसके बाद अब आई इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात। सांस का काम है इसका, ज्यादातर सांस देना हमें, ऑक्सीजन नाक से अंदर जाती है और नीचे का जो पोर्शन है गले के नीचे है उसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स का जो हिस्सा है वो 10-12 सेंटीमीटर के करीब होता है। उसके बाद ये जो हमारा जिसको हम नरगट आम पंजाबी में घरों में बोलते हैं, ये जो कंडी सी है उभरा सा हिस्सा आप देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, या इसके जो ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं हाई आयड बोन। हड्डी का नाम है हाई आयड बोन और ये उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको हमने ट्रेकिया बोला था। तो ट्रेकिया इस तरह का स्ट्रक्चर कुदरत ने नेक में बनाकर रखा है कि भाई ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सिर से नीचे को जा रहे हैं, नीचे से ऊपर सिर को जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। कहीं ऐसा ना हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते कि भाई इसको पूरा यहां से निकालना है तो पूरी सिक्योरिटी से निकाला जाए, इसको कोई नुकसान ना हो, वो तो वो जो ट्रेकिया है वो हमारी इस तरह की बनी हुई स्प्रिंग टाइप की होती है। उसके बारे में पहले भी प्रोग्रामों में मैंने बताया था कि स्प्रिंग टाइप की होती है और ये कार्टिलेज की होती है, हड्डी की नहीं होती। हड्डी बनने से पहले का जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन का उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं कि पूरी हड्डी तो बन, जैसे ये नाक है ना, ये हमारा सामने का नाक हम हाथ लगा रहे हैं, ये नाक कार्टिलेज का बना हुआ है, हड्डी का नहीं। और पीछे आप हाथ लगाते हो ना आंख के नजदीक तो आप देखते हैं ये हार्ड है, ये हड्डी का बना हुआ है, कर्बिनेट जिसको बोलते हैं। तो सामने का जो है ये थोड़ा लचकदार है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया जो बनी हुई है स्प्रिंग टाइप बनी हुई है और ये कार्टिलेज टाइप की एक इसकी स्ट्रक्चर है कि मूव कर सकती है, आगे पीछे होती रहती है। और ये रखी इसलिए यहाँ कुदरत ने कि इसके नीचे से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है पास करें, मुख्यमंत्री को गुजरना है तो पूरी सिक्योरिटी कर दो चारों ओर जी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कुदरत ने उसके बनाई हुई है और इस सिक्योरिटी से जब ये नाली, मैं फिर दोबारा एक दोहरा दूं कि इस जंक्शन का अंदर का जो स्ट्रक्चर है ट्रेकिया के अंदर की, जिसको प्रोटेक्शन ये कर रहा है ट्रेकिया, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का गला तो खराब है या गले में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि वो जा ही नहीं सकती अंदर चीज, तो डॉक्टर लोग यहां पर सुराख करके ना फूड पाइप के कनेक्शन करके पाइप यहां ही डाल देते हैं। तो ये उस चीज का प्रोटेक्शन का हमारे पास इंडिकेशन है कि ये ट्रेकिया है, यहां पर आप सुराख कर सकते हो और फूड पाइप को पहुंच सकते हो या लैरिंग्स को, सांस नली को पहुंच सकते। कई लोगों को देखा होगा जिनको इस तरह की इम्फाइजेमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वहां पर एक विसल सी लगा देते हैं डॉक्टर कि सांस यहीं से आता रहे, नाक की जरूरत ही न पड़े, आपस इस तरह के आजकल के प्रबंध हुए हैं। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई ये एपिग्लोटिस के एरिया की प्रोटेक्शन करती है ट्रेकिया। एपिग्लोटिस का एरिया एक इस तरह की चीज है, इस तरह का जंक्शन है जहां पर फूड पाइप और सांस की नली ये दोनों आकर मिलती हैं। पहले जो नाक की नाली होती है, नाक से निकलती है और पीछे जाती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जा रही है, जब गले में आकर एपिग्लोटिस के एरिया में पहुंचती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। और फूड पाइप मुंह से शुरू होती है, नीचे फेरिंग्स होगी और फेरिंग्स जब ये एपिग्लोटिस के एरिया पर यहां पहुंचती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। मतलब फूड पाइप पीछे हो जाती है, सांस वाली नाली आगे हो जाती है और ये एक जंक्शन बन गया। और इस जंक्शन में कुदरत ने एक ऑटोमेटिक वाल्व लगा दिया। ऑटोमेटिक वाल्व का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त उस तरफ का रास्ता खुलेगा, वो वाल्व उधर को जाने देगा उसको, और जब आप खाना खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक सेंस है कि खुराक उधर को जाएगी। कभी कभी हमारी वो नर्व अगर फेल हो जाए, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को बार बार चॉकिंग होती है, पलट जाते हैं लोग,
फिर बहुत जबरदस्त खांसी आ रही थी कि कोई खुराक का हिस्सा या कोई चीज जो है वो सांस वाली नली में चली। इवन पानी पानी पीते हुए कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि पानी सांस वाली नली में जाता है, लेकिन वहां जा नहीं सकता, तेरा भी रास्ता ये नहीं है। और फिर जैसे अथरू आने वाली बात होती है, चर्चिंग होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है अगर फूड वगैरह हिस्सा कोई चला जाए था। लेकिन वो ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ लगा हुआ है जो इनके रास्ते को तब्दील करता है, गाड़ी का कांटा चेंज करता है, तुम इधर को जाना है तुम इधर को जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आकर फेफड़ों की नाली आगे हो जाती है और ऊपर के इसका नाम था लैरिंग्स, एपिग्लोटिस से निकली तो इसका नाम हो गया ब्रोंकस, और फूड पाइप जो ऊपर से आई थी उसका नाम था फेरिंग्स, नीचे जब इससे निकली एपिग्लोटिस से तो इसका नाम हो गया ईसोफेगस। तो इनके नाम भी बदल गए और ये आगे निकलनी शुरू हो गई। हम बात फेफड़ों की कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ लैरिंग्स को लेकर ही चलेंगे हम लोग। तो लैरिंग्स जब एपिग्लोटिस से निकली तो इसके नाम बदल गया, ब्रोंकस नाम हो गया इसका। और ब्रोंकस का स्टार्टिंग तो एक है लेकिन आगे दो हिस्सों में बांट, दो हिस्सों में बंट गई। इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही प्रोटेक्शन है उसकी, इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही वो दो हिस्सों में बंट गई और एक राइट फेफड़े को जाएगी, एक लेफ्ट फेफड़े को जाएगी। उसको राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस हम बोलते हैं, बड़ी आसान सी बात है समझना कि लैरिंग्स के दो हिस्से हो गए, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, उसका नाम चेंज हो गया लैरिंग्स का, ठीक है। सो उस दाहिने फेफड़े को और बाएं फेफड़े को जाने वाली होगी। अब जब ये जो हाइलम मैंने बताया, जो सेंटर वाला जो तो राजमा के अंदर का हिस्सा जो मैंने कर्व किया होता है उस हिस्से की बात कर रहा हूं, वहां से ये फेफड़ों में एंटर करेगी दोनों साइड, वहीं और भी स्ट्रक्चर जा रहे हैं और वो मीडियास्टाइनम में जा रहे हैं, बड़ी प्रोटेक्शन है उनकी, उनके लिए कुदरत ने अलग अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रबंध किया सिक्योरिटी का। सो ये दोनों राइट को जाएंगी लेफ्ट को जाएंगी। अब आगे का जो इसका नाम है हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जब हम बोलते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है कि एक ट्री का एक स्टेम होता है, तना होता है, तने के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, टहनियों की सब टहनियां होती हैं, छोटी छोटी टहनी होती है, फिर उसके आगे पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं वो चौड़ी होती है, टहनी तो बिल्कुल पतली होती है, और उसके आगे जो पत्ते निकलते हैं या जहां फूल निकलते हैं, फूल भी चौड़े होते हैं और पत्ते भी चौड़े होते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। और ये जो ब्रोंकियल ट्री है हमारा, जब ट्रेकिया से निकला, ट्रेकिया से निकला दो हिस्सों में बटा और उसके बाद इसका राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस आ गया नाम, उसके आगे जब ये ब्रांचिंग होना शुरू होता है ना, इधर भी टहनियां फैल रही, राइट फेफड़े में लेफ्ट फेफड़े में जानी शुरू होगी, प्लस राइट साइड में तीन भागों में बांटकर तीन तीन लोब में जानी शुरू होगी, लेफ्ट साइड में दो भागों में बांटकर दोनों चीजों में बांटनी शुरू होगी। तो जो ब्रोंकस की वो लेफ्ट साइड में दो हिस्सों में बटी, राइट साइड में तीन हिस्सों में बची, और फिर वो आगे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, फिर उनके आगे ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। ब्रोंकियाई जो है बस हम कर लें कि एक दरख्त की बहुत ब्रीक टहनियां हैं इस तरह, लेकिन वो अंदर से खोल है, अंदर से पाइप है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जानी है, अंदर और कुछ नहीं जाना, सॉलिड कोई चीज नहीं जा सकती, ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रोंकाई के अंदर वे ये जो है ब्रांचेस जब होती हैं उसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स, छोटी जैसे आम तो के बोलते हैं एक तो आर्टरी होगी ना, आर्टरी होगी, आर्टरियोल्स होगी ना, आर्टरियोल्स के आगे जो पंजाबी में उसको बोलते हैं, उसको बोलते रतवाला, रतवाला था क्या, रत सभी समझते हैं, रत क्या है, खून, खून क्या है, रेड, लाल लाल टाइप की कोई भी चीज जब वाल की तरह ब्रीक हो जाए तो उसको हमने रतवाला बोला था, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट है इससे कि हम उसको आर्टरियोल्स बोल दें। अंग्रेजी में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, हमारे हिंदी में समझना बहुत बहुत मुश्किल सी बात है, जैसे मैंने
दूसरे प्रोग्रामों में बताया था, अगर हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं तो बड़ी आसान सी बात है, सभी समझ लेते हैं। और अगर हम ये कहें लो पथ गामनी विश्राम ग्रह, तो बड़ा मुश्किल है जानना, ये जाय रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह मेडिकल साइंस में जितने भी हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर वर्नाकुलर टाइप के हो गए, ज्यादातर रूटीन, गुड वेरी गुड जी। तो ये आम रूटीन के बहुत सारे लफ्ज हैं, हर एक भाषा ने एक दूसरी भाषा से लफ्ज लिए हैं और वो अपना विरसा और स्ट्रांग करते रहते हैं। और मेडिकल साइंस में तो खास तौर पे ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस, चाहे हम हिंदी में, चाहे हिंदी वर्जन वाले लोग हैं, चाहे पंजाबी वाले लोग हैं, ज्यादा वर्ड हमारे जो हैं वो अंग्रेजी वाले ही हैं और उनको समझना हमारे लिए आसान है। तो ये मैं उस ब्रोंकियल टी की एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रहा हूं कि टी की तरह जब बना तो जब उसकी ब्रोंकियोल्स बन गई, छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके आगे फिर जैसे पत्ते निकले, तो पत्ते निकलते हैं तो वो टेनिस जो ज्यादा चौड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, तो उसके आगे एक जैसे फुलफुला होता है ना, पुखाना होता है ना, बुलबुला जैसे फुलाते हैं हम लोग, वो बुलबुले की तरह आगे स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं उसको, है जी। वो पुकाने की तरह है, वो फैलती है कि जैसे ही बाहर से हवा आई हमने इंस्पिरेट किया, सांस लिया, इतनी ब्रांचों से होता होता होता होता एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, वो एल्वियोलाई फूल जाएगी। जब वो फूल जाएगी तो उसके अंदर दो काम होंगे, एक तो ये कि ये एयर आई है, दूसरा ये है। अच्छा, एक और अंतर है इसमें, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सांस तो हम एक मिनट में 14 से 16 बार लेते हैं नॉर्मली, हार्ट एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। मतलब क्या हुआ, हार्ट जो फेफड़ों को खून भेज रहा है वो एक मिनट में 72 से 80 टाइम भेज रहा है। मतलब है कि ये जो एल्वियोलाई है इसमें ऑलरेडी हवा आने से पहले खून वहां पर है, और वो खून है जो पूरे शरीर से होकर आया है, उसमें नाइट्रोजिनस, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस तो हैं, इसमें गार्बेज और भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है। अब ये 72-80 बार, ये समझ कर लें कि ये जो ट्रैफिक आ रही है, 72 ट्रेन आ गई हार्ट से फेफड़ों में और वो एल्वियोलाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 72 से 80 बार एक मिनट में ट्रेन आ गई, इतनी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो सामान लेकर आ रही, वो जो खून लेकर आ रही है उसमें गार्बेज है सारा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनस गैसेस है और भी कुछ है, लेकिन सांस जो है आ रहा वो 14 से 16 बार पर मिनट में आ रहा। तो मैं ये बात कहकर आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि खून, ब्लड ऑलरेडी उन एल्वियोलाई में एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीजन आई बाहर से, सांस से ऑक्सीजन अंदर गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भारी है, उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की है। तो क्या वैसे वो छोटे छोटे स्कूलों में हम जो पढ़ते थे ना, तो ये साइंस के एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करवाते थे कि जो भारी गैसेस है उसका जार था उसको हम नीचे ऊपर रखते थे, और जो हल्की गैस उसको नीचे रखते थे, तो अल्टीमेट देखते थे वो एक्सचेंज हो जाती थी, भारी गैस नीचे आ जाती थी, दूसरी ऊपर चली जाती। ठीक वही क्रिया यहां पर होनी शुरू हो जाती है कि बाहर से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन इस ब्रोंकियल ट्री से होते होते ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स तक जाते हुए यहां एल्वियोलाइज में पहुंच गई, और एल्वियोलाइज में ऑलरेडी ब्लड यहां है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जहां ऑक्सीजन गई ये तो भारी है, एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन गई तो ये अंदर बैठ जाएगी उस ब्लड में जो वहां पर भरा हुआ पहले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाएगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कुदरत ने अपने आप बनाया है, इसमें कोई बहुत बड़ी कार्यकारी वाली समझने वाली बात नहीं है कि कैसे हमारा खून साफ होता है, कैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, कैसे ही है। और ऑक्सीजन बाहर से आई, ये खून वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, और ये जो एक और बात है, यहां पर
एक बड़ी अजीब बात होती है कि जितनी भी एल्वोलाइज हैं, ये जो पुकाने तरह फूली हुई है जिसमें खून आकर इकट्ठा होता रहता है बहत्तर बार एक मिनट में, उसमें नीचे बहुत थिकनेस होती है क्योंकि बहुत ब्लड नीचे है। जैसे ये हम कहें कि किसी एक ही बर्तन में दो तरह की चीजें, दो रंग नहीं रह सकते, दो तरह का जूस हो तो अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। रेड कलर का जो हरे रंग का कोई जूस आप मिलाएं तो वो एकदम मिक्स मिल जाएंगे आपस में। लेकिन यहाँ पर एक अचंभे वाली बात होती है कि ऊपर वाला जो होता है वो लाइट उसका डिफरेंट कलर होता है, नीचे वाले का सेपरेट कलर होता है, क्योंकि थिक खून नीचे बैठ जाता है। एक बात आपको शायद याद होगी, मेरे दिमाग में आ गई अभी चलते चलते, मैंने आपको कहा था कि प्लेसेंटा जो है जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ से जो खून आता है वो सीधा बच्चे को नहीं जाता, रास्ते में एक कस्टम डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो उस प्लेसेंटा में खून एक तरह इस तरह का कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह का खून रहता है। एक खून जो मां की तरफ से आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है और वो भारी है, दूसरी तरफ बच्चे से वापसी होकर खून जो आ रहा है वो भी प्लेसेंटा में मां को वापस आ रहा है और वो हल्का है, वो सेपरेट है। तो मतलब बच्चे से जो आया हुआ खून वो ऊपर रहता है और नीचे से प्लेसेंटा, आपने देखा होगा कभी किसी ने ऑल देखी हो ना, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑल देखी हो तो उसके नीचे वो नाली लगी होती है जो हम काटते हैं, नाड़ू काट दिया जी, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे लगी होती है। और नीचे इसीलिए लगी होती है कि मां की तरफ से आने वाला खून ऑक्सीजन वाला है और ऑक्सीजन भारी है, ये नीचे रहेगी, और जो बच्चे से आने वाला खून है वो हल्का है इसलिए ये ऊपर रहेगा। और आप उसको देखेंगे भी तो नीचे वाला पोर्शन जब ऑल बाहर आ जाती है बच्चे के साथ, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है जहां अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है वो नीले नीले रंग का होता है। तो कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह के खून रह रहे हैं। समुन्द्र में भी ऐसा होता है कि वहां का ये नीला समुन्द्र है, वहां का ये हरे रंग का समुन्द्र है, लेकिन समुन्द्र में दीवार तो होती नहीं, एक ही पॉट में इस तरह होता है। तो वही बात मैं फेफड़ों की बात आपसे कर रहा हूं कि फेफड़ों में भी ऐसा होता है कि जो खून हार्ट से फेफड़ों में आया, एल्वोलाइज में पहुंचा, वो हल्का है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और बहुत सी गैसें हैं, वो हल्की है, वो ऊपर रहेंगी, और ये जो जाएगी और एयर बाहर से ये भारी है और ये सेडिमेंटेट करेगी नीचे। तो नीचे वाला खून जो है उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इन्वेड करती है, और इन्वेड करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, कुदरत ने हर चीज इस तरह समझे ना, अगर आप हम लोग समझना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर चीज को कैसे कैसे कुदरत ने बना दिया ऑटोमेटिक। वो गुरु नानक देव जी की बात मैंने करी थी, कई बार मैं करता हूं कि जो कि छिपाया सो एक बार, उसने जो करना था ना एक बार सब कर दिया है, अपने आप सारा कुछ चले जा रहा है। और ये भी अपने आप करने वाली बात है कि मैं जब सेल की बात कर रहा था ना आपसे, एक सेल है, सेलों से ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है। अब सेल किस तरह का किला है जिसकी दीवार तो है पर इस दीवार में दरवाजा नहीं है। अब इस सेल में बाहर से खुराक भी जाती है, अंदर से गार्बेज भी बाहर आता है, लेकिन दरवाजा नहीं है। तो अब उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मैंने बार बार आप लोगों को एग्जांपल दिए, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में उसी तरह वो बैठ जाए कि या हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। आप कपड़े के पोने से आप चाय छानते हो या शिकंजी भी बनाते हो तो वो छानते हो, या कोई भी चीज इस तरह की पानी की बनाई हुई शरबत की उसको छानते हो, तो उसको जितना प्रेशर दोगे ना, जितना ऊपर से प्रेशर दोगे उतना नीचे से वो संघना मादा भी नीचे आ जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर ज्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ही जो खून सेल में पहुंचता, हरेक सेल की बात करो, उसमें जो आ जाते हैं ना वो आर्टियोल्स हैं, बाहर से खून सेल में आता है, आर्टियोल्स में प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से आर्टियोल्स का खून
सेल की दीवार को इसी तरह प्रेस करके उसके अंदर चला जाता है और जो अंदर का गार्बेज है जिसमें गैसेस हैं वो बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह इस प्रोसेस का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि कैसे सेल के अंदर दरवाजा तो है नहीं, कैसे सेल के अंदर खून जाता है, खुराक जाती है, कैसे सेल से अंदर से बाहर गार्बेज आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमीएबिलिटी। तो परमीएबिलिटी के तरीके से ही ये सारा प्रोसेस सारे शरीर में एक एक सेल में खून जाता है, खुराक जाती है। इसी परमीएबिलिटी के तरीके से ही एक सेल से बना हुआ गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो मैं कहा बात कर रहा हूँ फेफड़ों की। अब फेफड़ों के एल्वोलाइज में वो जो पुकाने फूले हुए हैं उनमें हार्ट से खून आता आता आता आता 72 टाइम खून आ गया, उसमें आकर सेडिमेंटेट कर रहे, वो फूल गए, वो फूले हुए हैं। और याद करें कि फूलना भी उनका इस तरह है कि वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकें अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने बारीक हैं, फूल जाते हैं। 72 बार एक ट्रेन आई, उसने अपने पैसेंजर वहां डाल दिए, बावजूद इसके भी वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक है। तो क्या हुआ, वो उसमें चले एल्वोलाई में वो चले गया, वो खून बैठा हुआ, पहले बाहर से ऑक्सीजन आई तो उस ऑक्सीजन के जो वो भारी है, उस ऑक्सीजन का जो है मॉलिकुलर वेट ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रह जाती है, वो चीजें ऊपर आ जाती हैं, जो सॉलिड ब्लड होता है वो नीचे रह जाता है। अच्छा एक याद, इस ब्लड में और गार्बेज भी है, ये जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट से होकर फेफड़ों में आया है ना, अकेला गैसेस गार्बेज नहीं है, और गार्बेज भी है। उसकी बारे में आपको बताता हूं कि ये यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन भारी है वो नीचे बैठ जाती है और नीचे ऑलरेडी ब्लड है और उस ब्लड में ट्रेन के खाली डब्बे हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा कि जितने भी ब्लड के सेल हैं ना, उनमें कुछ सेल तो हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल कहने से मेरा मतलब ये है कि उसका अपना अंदर भरा हुआ है, उसका उसको लिविंग सेल बोलते हैं हम लोग, जो अपने आप अपनी जीत लगे आगे आगे कर सकते हैं। सो वो उनको हम न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे सेल जो हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल हैं, मतलब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, इसके अंदर अपना मटीरियल है भाई। लेकिन जो आरबीसीज हैं जिसको हम रेड ब्लड कहते हैं, लाल खून के कण जिसको हम बोलते हैं, ये बेचारे खाली डिब्बे हैं, ये अंदर इसके कुछ नहीं, बाहर बाहर दीवार ही है, खाली डिब्बे हैं, और जो ऑक्सीजन आई थी नीचे वो इसमें भर जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये खाली हैं। और भरती कैसे है, क्योंकि इनका अपना मेम्ब्रेन है, इनका को ये भी तो सेल है ना, तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो भारी, वो जबरदस्ती इसके अंदर घुस जाती है, वो ये ट्रेन के डिब्बे भर जाती है। उसके बाद इनको वापस जाना है और वापस जाने के लिए नीचे वाले पोर्शन से जो निकलती हैं लाइनें जिनको हम बोलते हैं वेन्स, और उसकी जगह वेन्स जो हैं वो बाईं तरफ हार्ट को खून लेकर जाती। आने वाली थी एक पल्मोनरी आर्टरी, वो गार्बेज लेकर आ रही थी, दो भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों को उसने बांट दिया, दोनों फेफड़ों से फिर दो दो नालियां कि भाई जितना, क्योंकि 72-80 बार चला है बेचारा, तो जितना ज्यादा खून है साफ हो गया है इसको फटाफट पहुंचा दीजिए फैक्ट्री में, जितना सामान तैयार हो गया इसको फटाफट मार्केट में भेजें। तो कुदरत ने चार वेन लगा दी कि चार वेन जो हैं, दो राइट फेफड़े से दो लेफ्ट फेफड़े से, फटाफट हार्ट के बाईं तरफ लेफ्ट एट्रियम में वो भेजना शुरू कर देती। तो खैर वो हार्ट की बात है, मैं केवल आज फेफड़ों तक सीमित हूं, तो फेफड़ों की बात मैं ये कर रहा हूं कि इस प्रोसेस से ये जो हमारी एल्वोलाई है इनमें एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो एक्सचेंज प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इसमें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन
क्योंकि 72 बार खून आता है या 80 बार आता है या किसी का ज्यादा भी आता होगा, पल्पिटेशन होता है या प्रॉब्लम होती है तो खून ज्यादा आ जाता है कई बार फेफड़ों के, डॉक्टर लोग स्टेटस को बुलाकर हम जो देखते हैं ना तो यही चीज देखते हैं कि कोई चीज ज्यादा आ गई है तो हवा को जाने में दिक्कत होगी ना, उसकी अलग अलग आवाजें हैं जो हमारे कानों में फिक्स है। जैसे वो कोई अच्छा शिकारी होता है ना तो बाहर जाए वो शिकार करने तो कोई जानवर बोलता है, बोलता है ये बटेरा बोल रहा है, ये तितर की आवाज आ रही है, ये इसकी आवाज है, वो जानवरों की आवाजें उसके दिमाग में फिट हो जाती है, ये बोल रहा है। इसी तरह हम लोग डॉक्टरों के दिमाग में ये चीजें फिट होती है कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। अगर किसी को निमोनिया हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। तो जितनी भी बीमारियां इस तरह की होती हैं उनकी आवाजें अलग अलग हमारे कानों में फिक्स है दिमाग में, वो कि हम ये उसकी आवाज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस से एक्सचेंज का प्रोसेस गैसों का चलता रहता है, बाकी जो गार्बेज है ना यहां सिर्फ गैसों का गार्बेज एक्सचेंज हुआ है और आगे ये खून हार्ट में गया, हार्ट ने फिर खून पूरे शरीर को दिया, पूरे शरीर में चलते चलते अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग जैसे किसी ने थाने बनाए होते हैं ना, ये सीए स्टाफ है, ये स्टाफ है, वो है, अलग अलग चीजें उन्होंने बना दी हैं। तो आगे जब ये खून चलता चलता, इसमें ऑक्सीजन तो है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको, जैसे बाजार में आता है ना कोई रेडी वाला, वो सब्जी बेचने के लिए आता है और उसके पास तो सभी सब्जियां हैं, मेरी जो जरूरत है, मैंने कद्दू खरीदने तो कद्दू लूंगा, मैंने भिंडी खरीदनी तो मैं भिंडी लूंगा, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेनी थी वो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, आगे ये खून गया हार्ट ने फिर इसको पूरे शरीर में भेज दिया, पूरे शरीर में भेजते ये खून चलते चलते चलते चलते पहुंच गया किडनी में, कुछ हिस्सा किडनी में पहुंच गया। तो किडनी ने ये सोचा कि ना भाई खून में इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना ये चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया है, ये तो बंदा लून बहुत खाता है, ये तो बंदा ये इस तरह की खुराक बहुत खाता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं, इसके ये तो एल्ब्यूमिन फैटी चीजें बहुत ज्यादा खाता है। तो वो क्या करेगी कि भाई मेरे पास ये छानना लगा हुआ है, मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, इसमें जो जो चाहिए शरीर को मैं वो जाने दूंगा, बाकी चीज नहीं जाने दूंगा, ये मेरा कस्टम डिपार्टमेंट है, बाहर के देश से ये चीज नहीं आ सकती। तो वो चीज वापसी खून में फिर भेज देगी किडनी, जो दूसरी चीज है उसको पानी में मिक्स करके पेशाब से बाहर निकाल देगी। अब गार्बेज तो फिर भी बच गया, और भी गार्बेज बच गया, वो फिर खून जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और सर्कुलेट करते करते वो फिर पहुंच जाता है चमड़ी के पास। चमड़ी जो है हमारी, वैसे तो बाहर से लगता है कि ये तो बंद है पूरी तरह, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें मुसाम हैं और वो मुसाम जो हैं वो परमीएबिलिटी के हिसाब से खुलते हैं, फैलते हैं और सुकड़ते हैं। बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहां पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है, गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां कार्रवाई होनी थी सफाई की हो गई, और उसके बाद ये स्किन के पास पहुंचा था तो स्किन ने कहा कि ठीक है भाई ये जितना गार्बेज बाकी है ना इसका मैं संभाला करती हूं। और स्किन के अंदर कुदरत ने एक स्पेशल टाइप का टोका लगाया हुआ, टोका मशीन है, चारा कुतरते हैं हम, छोटा ब्रिक ब्रिक करते हैं उसको पशुओं के लिए, तो इसी तरह का उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। वो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना, क्योंकि तो सारा गार्बेज तो खून में मिक्स होकर आ रहा है, वो सारा तो इतना ब्रीक नहीं है कि चमड़ी के मुसामों से बाहर आ जाए, इसलिए वो उसको ब्रीक करता है, और ब्रीक करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड तो फिर पसीने से वो बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा खारिश होती है ना, भाई खारिश का मैकेनिज्म क्या है, तो कभी इधर खारिश हो गई कभी उधर खारिश होगी, क्या है मतलब ये है कि वो जो गार्बेज आ गया आपने जो खाया था वो पूरी तरह टट्टी से पेशाब से निकला नहीं है, रह गया है, वो स्किन तक पहुंचा है,
और वो जो चीजें आपने खाई हैं वो शरीर को नहीं चाहिए, शरीर बर्दाश्त नहीं करता, वो गर्भ के लिए हरेक सेल ने बाहर निकाल दी है और खून में जाते जाते चमड़ी में पहुंच गई है। अब चमड़ी बोलती है कि भाई ये तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, पूरे शरीर को कवर करता है, इतना बड़ा ऑर्गन तो कोई और है ही नहीं, अब मेरे से तो कोई गार्बेज बचना नहीं चाहिए, मैं तो सभी निकालना है मेरी जिम्मेवारी। तो वो जो गार्बेज स्थित होता है केमिकल टाइप का होता है वो नहीं निकलता, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें इरिटेशन होती है, हम खाश करते हैं ताकि इससे वो जो मुसाम है वो डायलेट हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। तो कार्य करते करते कई बार वो छिला भी जाता है, खून भी आ जाता है और कई बार वो